हरे कर्म सतगुरु सरनाई कर दया नाम प्रकाश मेरे मीत गुरुदेव मोकाओ राम नाम प्रकाश गुरमत नाम मेरा प्राण।

दशन बजायो आद्य अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार सीखो हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रण को बल मो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की वीर पछानत चीटी ते गुंजरिया स्थूला सबर कृपा दुष्ट कर भूला संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक की पीर पछाना घट घट के बड़ बड़ की जाना जबत कर करा कर तारा प्रजा धरत सब देह अपारा जब आ कर करत हो गब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन सष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेवना बाबत भेदा ताको कृपा हनर मानद महा मूढ़ गज भेद न जानत महादेव कहो कहत सदाशिव

अपना जान मुझे प्रत भरिया चुन चुन सतर हमारे मरिया देग तेग जग में दऊ चल राख मैं और ना दलै तुम मम करह सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दा जान कर कृपा करह मोहे हार प्रामयान द्वार तोहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर धारा दा जान द हाथ उबारो हमरे सब ऐरियन संगारो प्रथम धरो भगवत को ध्याना बहर करो कविता विदनाना किशन जथा मत चरत्रो चारो जू गए कबले हो सुधारो कवि वाय दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहे हो जग माहे ज्योते प्रभु को त्याय है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिबिचार कश नाहे जलते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आयस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए कभी बाज दोहरा ठाट भयो मैं जोर काल बचन कहाँ सर न्याय आए

बाल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवे गुर नव निध दरियाओ जन्म हम काल खतोवे सुकहो टल गुर सेविया एहन सहज सुभाए दर्श।

नानकुनु संगमोहे उदारु सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै

तष्टपदे जय मात्पिता सुतमीतना पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई जय महाभयान दूत जम दलाय तह केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल होवे अत भारी हर को राम खिर माहे उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुकरे रे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया।

अर्जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन किन्नो दान मान तन रंग रथे रंग एकाय नानक जन कै व्रत विवेकै हर का नाम जनको मुगत जुगत हर कै नाम जनको त्रिवत भुगत।

सगल घटा के अंदर जामी अपनी गत में जानू आपे अपन संगा प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते होए नान कबर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में ऊतम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कट बसै हर नाम सलोक निर्गुण यार ए आन्या सोप्रभ सदा समाल जिन किया तीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी कमन मूल ते कम दृष्टानी जंतु साज सवार सिंगारिया गर्भ अग्र में जिने उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भार जोबन भोजन सुख सूद बिरध भया उपर साख सैन मुख प्याओ बैठ कौ दैन ए निर्गुण गुण कशु न बुझे बख्श ले हव तव नानक सिजै जे प्रसाद हर पर सुख बसै सुत परात मीत बनता संघसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जे प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संसाद बसा दीने हस्त पाम कर्ण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संगरचना ऐसे दोख बड़ंद व्यापे नान काढ़ लियो प्र व्यापे आदंद जो राखन हार तिस्यो प्रीतना कर अगवार जाकी सेवा नवनिंद पावे तास्यो मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे तागो अंधा जान दूरे जाकी टहल पावे दरगे मान तिसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा ये भुलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोट झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्तर कर मानै

गाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कान बिखोट गवावे। एक बीना दे दस भी हर ले तो मूढ़ा कहो कह करे। जिस ठाकुर सियो नाही चारा, ताको की जाए सद नमस्कार। जाके मन लागा ब्रह्म मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस रब ना हुकम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया।

अवध जन्म मरा इसके अंदर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाप स्यानम सगल ते रहत सब कर जाने आत्म की रहत जिस भावित लाए लड़दाए तांतरंतर रया समाये सो सेवक कृपा करी निमक निमक जपना।

सुबह ब्रह्मगिरि निर्मल थे निर्मला जैसे मैला लगे जला। ब्रह्मगिरि के मानो प्रकाश जैसे तारु प्रिया आकाश। ब्रह्मगिरि के मित्र सतर समान ब्रह्मगिरि का राह अभिमान। ब्रह्मगिरि उच्च से ऊंचा मन अपने सबते नीचा। ब्रह्मगिरि सेजन पहे नानक जिन पर व्याप करे। ब्रह्मज्ञानी सकल की रीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी चीना। ब्रह्मज्ञानी की सब ब्रह्मया। ब्रह्मज्ञानी ते काश बुरा न भया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल ज्योता।

ब्रह्मज्ञानी जब संग ब्रह्मज्ञानी संग सकल उदार नान ब्रह्मज्ञानी जप सकल संसार ब्रह्मज्ञानी का एक रंग ब्रह्मज्ञानी का बस ब्रह्म संग ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार ब्रह्मज्ञानी का नाम प्रवार ब्रह्मज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्मज्ञानी अहम बोध त्यागत ब्रह्मज्ञानी

ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सत जीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

नहीं भी होगा। तैसा स्वर्ण तैसा सुमाटी तैसा मृत तैसी भी खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जोगत।

ब्रह्म के रंग जैसी मत तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करहे अनेक जाने अंतरा पारा वार, नानक रचना प्रभरची बहुत अनक प्रकार। अष्टपति कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बान भ्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कबका विचारे, कई कोट नतन नवतन नाम ध्यावे, नान करते कांत ना पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर,

कब भिखारी नीच का साजा, कबू अप कीर्त में आवे, कबू भला भला कहावे, जो प्रभु राखे तभी ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कह। कबू होए पंडित करे बखियान, कबू मुन धारी लावे ध्यान, कबू ताट तीर्थ शनान, कबू से साधक मुग्ञान, कबू कीट हस पतंग होए जिया, अनुक जोन पर मैं प्रभिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रभावित मन चावे, जो तस भावे सोई होए, नानक दूजा अवरण कोए। कबू सा संगत पावे, उस स्थान ते बहुर नया, वह अंतर हे ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का रही विनाश, बंतन नाम रते एक रंग सदा बसे, पार ब्रह्म के संग ज्यों जल में जलाए, घटाना त्यों ज्योति संग जो समाना,

दुखंते मुख पव संतन गए दुखन काग जोन लवे संतन गए दुखन सर्प जोन पाए संत गए दुखन त्रिगत जोन के रमाए संतन गए दुखन तृष्णा में जलाय संत गए दुखन सब कोशलाय संत गए दुखन ते सब जाए संत गए दुखन नीच नी जाए संत दुखी का धाम को नाहे नानक संत भावे वही विगत पाहे।

सदाभियोग संत के निंदा दोख में दोख नानक संत भावता उसका भी है मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी सब त्याग, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुखना सुखते ठराए, संत के दुखी को ना ही ठाव नानक संत भावे तलाए मिलाए, संत का दुखी अदबीज ते टुटाए, संत का दुखी कते काज ना पहुंचाए, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंदर दे तोता जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ की शनाहे अपन बीजा पे ही खाए, संत के दुखी को अपना रखन हार नानक संत भावे तलाए उबार, संत का दुखी इं बिल लाए जल भी जो जल भी हूं मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भुखा नहीं राजा जो पावक इंद्र नहीं त्रप्पा

पूर्ण परम भाव जाए अष्टपदी मानो कीटे का वृथि सब जान देवन गोय का भगवान जिसके दिया रहे अगाए बहुना दृष्णा लागे आए मारे राखे एक मानु का कृष्णाई हाथ जिसका हुकम भू सुख हो जिसका नाम रंग कंठ परोहे सिमर सिमर सिमर प्रभ सोहे नानक विघ्न लागे कोय उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सद व्यवहार

ब्रह्मान चित आवे सो संसवेला नहीं डुलाव जिस पर अपना कृपा कराया सो सेवको किससे डरा जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिज्या गुरु प्रसाद सब बुझा जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोय स्थूल न कि जन्म न किश मरिया बन चलते आप ही करे आपन जाम दृष्टान दृष्टा क्या गारी धारी सब सृष्ट आपे आप सकल में आप अनक जुगत राज था विनाशी नायक शिकांड।

సాధుగురు తిసుగా నా తిసుగా సాంగ సేకుదరా నాన్ కర్ గురుగా అష్టపది సద్గురు సిక్కి కరా ప్రతిపాల సేవకో గురు సదా దవ్యాల సిక్కి ఘోర ధోరమత మల్హరాయ గురు భచనీ హరనామ చరాయ సద్గురు సిక్కే బంధన కాటాయ గురుకా సిక్ బిగార్త హటాయ సద్గురు సిక్కో నామ తందే గురుకా సిక్ బడి భాగీ హే సద్గురు సిక్క హలత పల సువారే నాను సద్గురు సిక్కో జీనాల్ సంభారాయ గురు కే గ్రహ సేవక జో రహ గురు కియా గయా మన మహ సహ ఆప సుఖో కార కాశనా జనావే హర హర నామ హృదయ సత్యావే मन बिचार सतगुरु के सतगुरु के पास सेवा के कारज रा सेवा कर तो इन्हें काम को प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेव गुरु की मातले बीस बिस्वे गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान है सो सतगुर हृदय हर नाम अनक बार गुरु को बल जाओ सर्वनिधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म के आप नहीं कश परम सह सहन बलया ना जाइए नानक ऐसा गुर बटभागी पाइए सफल दर्शन पेगत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गे गवे सुनकर बचन करन आगा ने मन संतो का तम पतियाने पूरा गुर रखियो जाका मंत्र अमृत मिखे हुए संत गुण बेन की मित नहीं पाए नानक जिस भाव तिसलय मिलाए जे बाए कुसत नेक सतपुर पूर्ण विवेक कहु बोला पौचत ब्राह्मी काउ बोला पौचत प्राणी अगम अगोचन प्राप्त निर्वाणी निराहार निर्वैर समुदायी ताकि कीमत कदे ना पाई अनक भगत बंदन नित करहे चरण कमल हृदय सिमरहे सदबले हारी सतगुरु प्रे नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हर रस पावे जन गोए अमृत पीवे अमृत सो होए उस प्रकार नाही कदे बिना जाके मन प्रगटे गुमतास आठ पैर का नाम ने सच दे सेवको देवो माया के संग न लेव मन में हर मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रकाशे नानक परमो दुख तै ते नासे तप्त माए ठांड बरताई अनद भ्यात बनाठे भाई जन्म मरण गए मिटिया देसे साधु के पूर्ण उपदेसे पाओ चुका निर्भोय बसे सगल ब्याद मनते खै नसे जिसका साधन कृपा धारी साध संग जब नाम मुरारी तित पाई चुके ब्रह्म गबन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगुण पी वही करा धारण सगली बोही अपने चरित प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे बाहर बिंदु जा नाही को सर्व निरंतर एको सोए ओत बोध रभे रूप रंग अहे प्रगा साध गय संग रच रचना अपनी गलतारी

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक समर नाम आधार अवर पाप सब मीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण का सो प्रभ सम्राथ दृढ़ कर गह हो नाम रवत ए तन संचो भगवं संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन का उचार कुंट उठता वे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख कुंड पाछे मीत सो सुख साधु साधु संग प्रीत जिस सुभा को करे भली करनी सास सो बाबा जी हर की सरणी अनुग बावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अब खदराए सर्व निधान मेर नाम निधान जब नानक दरगे प्रवान मन प्रबुद्ध हर कह नाय दैद स्थावत आप बैठाए ताको बिघन न लागे कोय जागे हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाव पवन से पूर्ण हो आज भगत भया तंबर गा तत्कर जस जाए बसे बिनासी कहो नानक काटी जम फांसी तद विचार कहे जन साचा जन्म रह सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभु सेवा त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म गावे उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनुग भावना छूट नारे सेमरत सास वेद विचारे हर की भगत गुरु मन लाए मन मंचत नानक फल पाए संगना चाल तेरे धना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुध मीत गुटम अर बन तंते कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार ते कहो कमन छुटकार आ सस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंदी है तुस बजे ना वे गाना नाम बिसार नानक पछताना गुर की बातों ले आने भगत बिना बड़ डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल भग जाहे आप जपो अवरा नाम जपाव संत कहत रह दगत बाव सार पुछ सतर को नाम सह सुभाए नान गुण गाओ गुण गाव तेरे उतर समैल बिन जाए हो मैं बिख फैर ओहे अजन बसा सुखनाल सास ग्रास हर नाम संभाल शाड सयानम सगली बना सा संग पावे साच धना हर पूंजी संज करो व्यवहार यहाँ सुख दर गया जयकार सब निरंतर एको देखो नानक जाके मस्त गलेख एक एको जप एको साल आह एक सिमरे को मन आहे एक सके गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आ पूर्ण पूर्ण प्रभ्याप अन्न विस्तार एक दब एक रात पराशत गए

अष्टपदी जब कार्य काशना दृष्टेता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिहना जापत तब हर सौ कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तमहो कहाँ कि शोभ परम आपन खेला भरतीजा नान करने हार न दूजा जब बोध प्रभ के भरत नहीं तब अंध भगत कहो किसको गनी जब एको तब अंध कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन आवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत तराए तब कमन ने डर कमन कत डराए आपन चलताव करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त के पूषद लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे जब यापन आप ही चर्जा नानक आपद रूप आप ही प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल शदर का लगत कौकीस जय जो स्वरूपी जो संग समाव तय किसे पुह का मंत्र बताव करण करावन करने हार नान करते का नाह सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कौन वाय माय माय बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तय वेद कतेब कहा कौशीन जब अपने आप उतार है तो शव शगन अपशगन कहा विचार है जापनु जापन आप नेरा कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जा अशल अशेद अपे समाया उहां किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जा एक एक एक भगवंता ते कौन अचंत किस लागे चिंता जे अपने आप आपति आरा ते कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचते उचा नानक आपस को आपे पहुचा या ब्रजो प्रपंच अकार ते गुण में किन्नो विस्तार पापन तय पही कहावत कहो नर को स्वर्ग मंशावत आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पैपार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखा है खेल संग कोचे तो नानक एक है ज अवगत भगत है आप ज पसरे पासार संत प्रताप दो पाका अपे तो नहीं उनकी शोभा उन्हु बनी आपे कौत करे अन जूझ अपे रास भोग निरजोग जिस भावत से अपन नाही लाभ है जिस भावत से खेल खेला।

राष्ट्रपति, आप कथे आप सुनने आर पे का विस्तार जात सभावे सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुम दे भिन्न नहीं किशो आपन सो सब जगत परोए जागो प्रभ जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को राज सराखे तस कोई ना मारे सो मुआ सिफनो मिसार है तिस्त जबर कहाँ को जाए तिस्त जबर कहाँ को जाए सब श्रेक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जनो साथ गुण निधान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपाले जीन बापांत जो जो रज सो तसे त्याथ जिस भाव तसलाए मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करनहार नानक जान्या जन लागे हर एक नाए तिसकी आसना बिरथी जाए सेवा को सेवा बन आई हुकम बूझ परम बद पाई इसते उपर नहीं बिचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन दूर भय निरवैर अंधन बुझे गुर के पैर ए लोग सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह स्वभाव आठ पैर प्रभ एको नेरा मिटे अज्ञान मन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन छे नानक फल पावो हालत पल दो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे साज ब्रेखिया मंत नाम जपो लिब लाए दुख दर्द मंते पा हो जाए सच बा पार करो वा पारी दरगह निभ खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आम जाहे तिस्ते दूर कहाँ को जाए उभरे राखन हार दियाए निर्भाव जपे सगल भाव मिटै प्रभ कृपा दे प्राणी छुटाए जिस पर राखे तुस नाही दुख नाम जब तो मनो सुख चिंता जाए मिटे अहंकार जन को कोई ना पहुँचन हार सिर पर ठाडा गुर सूरा नानकता के कार्य पूरा मधपुरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रमान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस पर

संजना का पेखम सा ब्रह्म संजना सुने सो भजन, संजना का पेखम सा ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म, संजना सुने सो भजन सर्वव्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी ये रहत साध भजन साधु सब कहत, जो जो है सोई सुख माने करन के राम नहार प्रभु जाने। अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब बोही, आप सत किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पात। तिस भाविता करे विस्तार तिस भाविता एक अंकार, अनकला लखी रह जाए जिस भावित सिलाए मिलाए। कम निकट कमन कहिए दूर आपे आप भरपूर, अंतर गज साब जनाए नानत जना बुझाए। सरभूता बरतारा सर्वरैना पेखण हारा, सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना। आपन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की निमाया, सबके माद अलभ तो रह जो किस कहना सो आपे का है। आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए, इसे होए सो नाही बुरा उरे कहाउ कने कश करा। आप ला कर तूता तने की आपे जाने अपने जी की, आप साज तारी सब साज।

जो जानना है सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभु सोए, उत्तरमंत कुलवंत पतमंत जीवन मुक्त हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया जिस पर सा सब जगत राया।

जगता। सर्वं देवं सर्वं भेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांतवय प्रसाद आदि रूपे अनाद मुहूर्त जवन पुरुख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेवादि उदार सर्वपालक सर्व

अनुराग, त्रिपुगत स्वरूप है, अचेज है, छूत है, के नरकंद परनाश है, पृथ्वी और प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है,

सदा सचिदानंद सतरंगना सिंह करीम मलकनी दास महतल निवासी अजय विभूते गजायब गरी मैं हरियम करियम करी महिमे चतर चक्रवर्ती।

धायो कूर करिया वृद्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवे बार बेनती जाओ पई।

उधारा सुवैया पाए गहे जबते तुमरे तबते कुआ उतरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक गहे माते कन मान्यो।

सचा होए, कुड़की मालक तरे तन करे हच्छा तोए। सच ता प्रजाणिया जा सच तरे प्यार, नाओ सुन मंग हसीए ता पाए मुख द्वार। सच ता प्रजाणिया।

साहिब हो दयाल कृपा करत साई कर कराई छी सेव सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम बनाए छी हुकम ने प्रमाण तक किस में का महल पाए छी कस में पावे सो कर मनो चिंदे सो फल।

तू ठाकुर तुम पहरदास यो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कणे।

तुमरी गात मित तुम्ही जानी नानक दास बोलना जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लही त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास राम दासे हुए सहाय अर्दन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावें ताय सब थाई हुए सहाय।

तुम दाती ठाकर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे सजन सच्चा पातशाह सिरसा दे साहू जिस पास बैठे हाँ सोही है

चिंता सगल त्यागी विनाशी कर कृपा अपने कर लीना मन वसिहाय अविनाशी कर कृपा अपनो कर लीना मन वसिहाय अविनाशी ताको बिघन न को लागे जो सतगुरु अपने राखे चरण कमल बसेर दी अंतर अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभ अपने